नमस्कार, मैं पंडित राजीव जनार्दन, आप लोग अभी सुन रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आला।

असल में बोलना नहीं चाहिए बीच में, लेकिन आलाप का चार हिस्सा होता है, स्थाई, अंतरा, उसके बाद संचारी और अभोग। संचारी अभोग ज़्यादातर आप लोग नहीं सुनेंगे बिकॉज द ऑडियंस इज सो वंडरफुल एंड आई फील लाइक प्लेइंग संचारी एंड अभोग फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर राग। आई एम गोइंग टू प्ले द थर्ड एंड द फोर्थ सेक्शन ऑफ द आलाप।

अभी आप सुन रहे थे तिलोश रेडियो पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आलाप। That was Alap, an Indian classical music radio show.